दुनिया, मैं तो रास्ते से जा रहा था, आपको मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं। स्वागत है आपका मिर्ची वाला एफएम, मिर्ची वाले राजेश के साथ। आज बॉलीवुड फिल्मी गीतों का संगम, जो हमारे इस साल का ही नहीं, आज के दिन का ही नहीं, अलाइव 90.5 पर आखिरी प्रोग्राम है। अब तमाम दोस्तों को तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने पिछले 20 साल और 6 महीने मिर्ची वाला एफएम को अपने दिल में जगह दी।

भी चाहें तो हमारे इस आखिरी शाम का हिस्सा बन सकते हैं। 0402397064 है मेरा नंबर, चाहें तो अपना मैसेज भेज सकते हैं जैसा अभी अभी किया परेश गौर जी ने। आप इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं रास्ते से चल नहीं रहा हूँ, मैं तो रास्ते से जा रहा हूँ और किसी को मिर्ची लगे तो मैं क्या करूँ। परेश हमारे प्रोग्राम के इनिशियल लिसनर्स में से हैं, तकरीबन 20 साल से हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं और बहुत सारे यादें मेरी परेश और इनकी वाइफ कश्मीरा और इनके परिवार के साथ जुड़ी हैं जो मिर्ची वाला एफएम के लिए बहुत बहुत मायने रखती हैं। थैंक यू सो मच परेश, थैंक यू सो मच कश्मीरा।

के साथ सिमर कौर, आप सुन रहे हैं हाउसफुल फाइव से लाल परी ऑन मिर्ची वाला एफएम, मिर्ची वाले राजेश के साथ सेलिब्रेटिंग द फ्रेंडशिप ऑन अलाइव 90.5 फॉर 20 एंड ए हाफ इयर्स। जी हाँ, आज हमारे इस प्रोग्राम का बाय बाय डे है अलाइव 90.5 पर। ध्यान रखिएगा, नॉट गुड बाय, ओनली बाय फॉर नाउ। आप सुन रहे हैं इधर अरविंद और नीरू गुप्ता जी, जो हमारे प्रोग्राम के उन लिसनर्स में से हैं। ना सिर्फ आपने हर प्रोग्राम को सुना, आपने हर प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट भी किया, अपनी फरमाइशें भी शेयर की और मुझे यानी कि अपने छोटे भाई दोस्त को गाइड भी किया टाइम टू टाइम प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए। आप दोनों को डेडिकेट करते हुए मिर्ची वाला एफएम की, मिर्ची वाले राजेश की तरफ से ये प्यारा सा गीत आप दोनों को डेडिकेट करते हुए। फ्री फॉल फॉर्मेट है, कुछ भी गीत आपके लिए, सिर्फ आपके लिए रात मिर्ची वाला एफएम पर।

जी हाँ, और जैसे मैंने बताया कि हमारे आज प्रोग्राम का ये आखिरी शो है ऑन लाइव 90.5, और इधर हमारे प्रोग्राम के साथ बहुत सारे लिसनर जिन्होंने हमारे उस फेसबुक मैसेज को पढ़ा और जुड़े हैं अपने अपनी तरह से. नीरज शारदा जी फ्रेंचिस फॉरेस्ट से हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, लिखते हैं, वी ट्रूली एंजॉयड एवरी सॉन्ग प्लेड ड्यूरिंग द शो बाय सच एन ऑसम एंड पैशनेट पर्सन लाइक यू. नीरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ये जो पैशन है ये थोड़ी सिकनेस वाले लेवल पे चला गया था, तो थोड़ा सा करेक्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ. और आई नो यू एक्चुअली नीरज जी ने दोपहर फ़ोन किया और शाम को बात की कि शायद देर इज स्टिल सम चांस दैट व्हाट इज़ द रीज़न ही वांटेड टू आस्क मी. रीज़न तो बहुत सारे हैं दोस्त, मगर फ़िलहाल ऐसे सोचा है कि कुछ थोड़ा टाइम ब्रेक लेके फिर ज़िंदगी के इस पैशन को इन्जॉय करूँगा और कहाँ करूँगा, आप लोगों के साथ ही रहूँगा. बस स्टे ट्यून, बताते रहिएगा कि आपको इन दिनों क्या अच्छा लग रहा है ताकि उस सेगमेंट को आप तक पहुँचा सकूँ. आगे लिखते हैं, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर, दिस इज़ डेफिनेटली नॉट ए गुड बाय. Thank you so much, Neeraj. Yes, it is not a goodbye. It's just bye for now.

और इधर अरविंद नीरू गुप्ता जी जो कि हमारे प्रोग्राम को सुने हैं, गिरविंद से लिखते हैं कि हाय राजेश, आई डोंट वांट टू मिस दिस प्रोग्राम इवन फॉर ए सेकंड टुनाइट. थैंक यू सो मच फॉर द काइंड लव एंड सपोर्ट यू हैव ऑलवेज गिवन टू द प्रोग्राम. और जी हाँ, आपके उस मूड को बनाए रखें. अब आपके पैर थिरकने लगे हैं तो थोड़ा सा डांस भी कर लीजिए, मैं साथ हूँ आपके.

और इधर हमारे प्रोग्राम की एक और लिसनर आप फेसबुक पे विशेस दे रही हैं, कहते हैं ये हैं वीना प्रसाद सिंह जी, वुड पार्क से हमारे प्रोग्राम को सुनती हैं। आप लिखती हैं वेल डन, विल मिस यू, वन ऑफ द लिसनर्स फ्रॉम डे वन, अंटिल नेक्स्ट टाइम हैव ए गुड ब्रेक, दिस इज़ वीना प्रसाद सिंह। वीना जी थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, और जितना मैंने पहले दिन की तो मुझे फरमाइश याद नहीं शायद, मगर जो मुझे याद है आप फेसबुक पे विशेस दे रही हैं, कहते हैं ये हैं वीना प्रसाद सिंह जी, वुड पार्क से हमारे प्रोग्राम को सुनती हैं। आप लिखती हैं वेल डन, विल मिस यू, वन ऑफ द लिसनर्स फ्रॉम डे वन, अंटिल नेक्स्ट टाइम हैव ए गुड ब्रेक, दिस इज़ वीना प्रसाद सिंह। वीना

क्या यही प्यार है। जी हाँ, फिल्म थी रॉकी और इधर प्यार की बात हो और दोस्तों का जिक्र ना हो। राज कौशिक जी बेलविस्टा से हमारे प्रोग्राम के साथ सुनते जुड़े हुए हैं। आप लिखते हैं, व्हाट ए जर्नी इट हैज़ बीन फॉर मोर देन 20 इयर्स। योर वॉइस, योर पैशन एंड योर लव फॉर बॉलीवुड म्यूजिक बिकेम पार्ट ऑफ सो मेनी लाइव्स एंड मेमोरीज। मिर्ची वाला FM वॉज नेवर जस्ट रेडियो प्रोग्राम, इट फेल्ट लाइक फैमिली। थैंक यू फॉर कीपिंग ओल्ड मेलोडीज अलाइव, कनेक्टिंग हार्ट्स थ्रू म्यूजिक एंड गिविंग लिसनर्स मोमेंट्स दे विल ऑलवेज चेरिश। योर डेडिकेशन, वॉर्म्थ एंड एनर्जी मेड एवरी शो स्पेशल। ये अलग बात है कि राज ने मुझे ना सिर्फ मोटिवेट किया और मुझे डांटा भी कि तू अपनी एनर्जी लूज़ कर देता है, बीच बीच में थोड़ा ऐसे जोश रखा कर अपनी अनाउंसमेंट में। थैंक यू राज फॉर एवरी टाइम यू कॉल्ड मी। अब आगे लिखते हैं, विशिंग यू एंड योर फैमिली एंडलेस हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन वॉट एवर कम्स नेक्स्ट। दिस मे बी बाय फॉर नाउ बट मेमरीज एंड इम्पैक्ट यू क्रिएटेड विल स्टे फॉर एवर। थैंक यू फॉर 20.5 and a half year ब्यूटिफुल ईयर्स। थैंक यू राज एंड नोइंग योर एनर्जी द वे यू आर। डेडिकेट करते हुए ये प्यारा सा गीत मिर्ची वाला FM पर।

और इधर बहुत सारे लिसनर जो हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ते हैं, प्रोमिल मेहरा जी जो कि कैलीविल से हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ते हैं, आप लिखते हैं राजेश वी हियर यू एंड वी विल वेट टू हियर यू अगेन। गुलशन कुमार जी जो हमारे प्रोग्राम को माफ़ कीजिएगा पेनरिथ की साइड से सुनते हैं, आप लिखते हैं विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट थिंग। मंजू पाई जी अपनी ब्लेसिंग भेज रही हैं। रेणुका राजीव मैनी जी अपनी ब्लेसिंग्स भेज रही हैं। दिनेश पिपलानी जी लिखते हैं यू आर द बेस्ट ऑसम। मोनिका मदान जी लिख रही हैं जय श्री राम। अनूप अनु जी भी अपनी ब्लेसिंग्स भेज रही हैं। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार का। और जी हाँ, मैं ऐसे सोच रहा था कि आप हर बार सिग्नेचर ट्यून सुनते हैं, क्यों ना मैं वो सिग्नेचर ट्यून जाते जाते एक बार आपके साथ लाइव शेयर करूं। इस गीत के बाद आपके साथ अपनी सिग्नेचर ट्यून लाइव विद यू ऑन एयर।

जी हाँ, और नॉर्मली हर 30 मिनट के बाद आप सुनते थे, आज 39वें मिनट पर सुनिए, मगर लाइव सुनिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिर्चीवाला एफएम नाउ प्रेजेंट्स बॉलीवुड सॉन्ग्स ऑन अलाइव 90.5। से ट्यून टू मिर्चीवाला एफएम। बहन और भाइयों, मिर्चीवाला एफएम अब पेश करते हैं बॉलीवुड फिल्मी गीतों का संगम अलाइव 90.5 पर। सुनते रहिए मिर्चीवाला एफएम।

उषा थिरुमेनी जी आप लिखती हैं ह्यूज कंग्रेचुलेशंस राजेश इंडीड एन अमेजिंग माइलस्टोन। विद्युत कुमार देसाई जी लिखते हैं इट इज एन अमेजिंग माइलस्टोन राजेश कंग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज़।

0: सोनिका पिपलानी जी मार्सडन पार्क से लिखती हैं, वाओ ग्रेट, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस ऑन रीचिंग दिस ह्यूज माइलस्टोन, यू आर ए ट्रू जेम, थैंक यू सो मच सोनिका जी। अगर जलवा आप सुन रहे हैं, ये थी ट्रैक था फिल्म अवॉन्टेड से। और जी हाँ, अब एक रेडियो जॉकी को दोस्त जब प्यार से मुबारकबाद दें और ऑल द बेस्ट कहें, तो ऐसे प्यारे प्यारे मैसेज कहाँ मैं मिस कर सकता हूँ आपसे शेयर करना। एक और मैसेज कपिल और शालिनी कोहली जी हमारे प्रोग्राम को नॉर्थ कैलिविल से सुनते हैं। आप लिखते हैं, राजेश 20 एंड ए हाफ ईयर इज़ नॉट जस्ट ए माइलस्टोन, इट इज़ ए लेगेसी। Thank you, Kapil. Thank you, Shalini. Mirchiwala FM has been a beautiful part of our community, our weekends, our family moments, and our love for Bollywood music. Your voice, warmth, humor, passion brought people together and created memories that will always stay close to our hearts. Thank you for giving so much of yourself to the community and keeping the spirit of music, dedication, and connection alive for so many years. This is definitely not goodbye, only bye for now. Wishing you and your family endless happiness, success and love in the next chapter. Thank you for 20 and a half year unforgettable years, Rajesh. Best wishes for your future endeavor. Thank you Kapil, thank you Shalini. Aap dono ko jitna main jana hoon pichle kai saalon se, dono ko dedicate karte hue ye pyara sa geet आपकी नजर मिर्ची वाला FM पर।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या

जी हाँ किशोर जी, और फिल्म दीवार से आपने सुना, जो कि 1975 की सुपरहिट फिल्म रही है। इधर हमारे प्रोग्राम के सुपरहिट लिसनर ईशा जी, उनकी मदर मानवी कार्तिकेयन, जो हमारे प्रोग्राम को कैलीविल से सुनते हैं, आप लिखते हैं, कांट बिलीव इट हैज़ बीन 20 and a half years। यू हैव क्रिएटेड ए लेगेसी दैट विल लिव ऑन थ्रू द मेमरीज यू हैव मेड विद आवर लिसनर्स, विद योर लिसनर्स टाइम रियली फ्लाइज। थैंक यू फॉर योर डेडिकेशन एंड सर्विस ऑन मिर्चीवाला FM। आप हैं मानवी और ईशा, और ईशा शायद जिन दिनों में हुई तब प्रोग्राम अपनी बुलंदी पर था, और आई एम श्योर ईशा को शायद याद हो ना हो, बट बहुत बार उनकी माँ भी हमारे प्रोग्राम के साथ प्रेगनेंसी के दौरान भी हमारे प्रोग्राम को सुना करती थी। एंड आई स्टिल रिमेम्बर जब ईशा का जन्म हुआ, और जब वो पहली बार उस वीक में जिन दिनों में वो घर आई, तो मानवी ने मेरे घर आई एक नन्ही परी के सॉन्ग की रिक्वेस्ट की थी, मगर एज़ एवरीवन नोस टाइम फ्लाइज, अब ईशा स्कूल जाने लगी हैं और हमारे प्रोग्राम को सिर्फ सुनती नहीं है, अपनी पसंद से सुनती है और अपनी रिक्वेस्ट भेजती है। और बहुत बार आपने जिस गीत को सुना और इन्जॉय किया, आपकी नज़र मिर्चीवाला FM पर।

आप सुन रहे हैं मिर्ची वाला FM, मिर्ची वाले राजेश के साथ. और जैसा मैंने बताया कि आज हमारे इस प्रोग्राम की यानी कि मिर्ची वाला FM की आखिरी प्रोग्राम है आज ऑन अ लाइव 90.5. जी हाँ, इट्स नॉट गुड बाय, इट्स जस्ट बाय फॉर नाउ. फिर मुलाकात होगी, कहाँ होगी, कब होगी, ये ऊपर वाला जानता है, या फिर आपका वो प्यार जिसे आपने पिछले 20 साल से भी ज़्यादा अपने दिल में जगह दी, आपने पसंदीदा प्रोग्रामों की लिस्ट में जगह दी. जी हाँ, बात कर रहा हूँ मिर्ची वाला FM की. मीनाक्षी शारदा जी फ्रेंचिस फॉरेस्ट से हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ती हैं. आप लिखती हैं, कंग्रेचुलेशंस एंड वाओ ऑन दिस इनक्रेडिबल 20.5 ईयर म्यूजिकल जर्नी फिल्ड विद पैशन एंड डेडिकेशन. विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंड मैनी मोर ब्यूटिफुल मोमेंट्स अहेड थ्रू यू म्यूजिक. थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी. आप कुछ ही साल से आप हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने जब भी प्रोग्राम सुना है, आपने हमारी प्लेलिस्ट को चार चांद लगाया है अपनी फरमाइशों के ज़रिए. आप दोनों को जितना मैं समझा हूं, आपका एक पसंदीदा गीत शेयर कर रहा हूं.

जब बात प्यार की हो, जिक्र यार का ना हो तो इसका भी क्या। जी हाँ, ऐसे ही एक यार मेरा जिसका नाम है सुशील, चेरी ब्रुक से हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ते हैं और लिखते हैं, वाओ, ग्रेट लेगेसी एंड सच ए ह्यूज कमिटमेंट। योर शो विल बी ट्रूली मिस्ड राजेश बाय मैनी ऑफ अस। आप इतना प्यार, शायद कैसे बोलूं, एक मिनट रुकिए जरा। ये इससे पहले कि गीत शामिल हो, आपके इस मैसेज पे मैं बताऊं कि सुशील जी एक बिजनेस ओनर हैं, और जब मैं बिजनेस ओनर कहता हूं तो ट्रूली बिजनेस ओनर, बड़े सालों से मेरे प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं और कभी कभी रिक्वेस्ट भी किया है इन्होंने प्रोग्राम में, एनिवर्सरी स्पेशल पर भी आपने जुड़े हैं, मगर मैं कभी सुशील की पसंद नहीं जान पाया कि आपको बॉलीवुड अच्छा भी लगता है कि नहीं लगता, गीत अच्छे भी लगते हैं कि नहीं लगते, मगर मुझे ये पता है कि आप सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स होने के लिए बॉलीवुड के पास आते हो, अदरवाइज़ यू आर ओवर ऑक्यूपाइड विद योर बिजनेस कमिटमेंट्स। आपके साथ बात भी कर रहे हैं अगर सुशील, तो आप सोचिए कि उनके अंदर कुछ और चल रहा है, मगर जब वो आपको आपको पता नहीं लगने देंगे, और आपको इतना मान, इतना प्यार देते हैं, मगर मैं एज ए रेडियो जॉकी कभी नहीं समझ पाया कि आप को बॉलीवुड का कौन सा सॉन्ग, कौन सा सिंगर ऐसा है जो आपको अच्छा लगता हो, जिसके गीत आपको सुनने अच्छे लगते हो, अभी तक नहीं पता लगा, कई सालों से आपके प्रोग्राम

हमको आप इस प्रोग्राम को सुनते हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बट कभी नहीं पता चला। जितना मुझे पता चला कि सुशील सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स होने के लिए हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, उसी कोशिश में ये गीत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

ये कोशिश है एक उस सिग्नेचर ट्यून को जो आप हर 30 मिनट्स में सुनते हैं, मेरी ही आवाज़ में रिकॉर्ड थी, तो मैंने सोचा अब चलते चलते आपके साथ वो ट्रैक जो है मैं लाइव पेश करता रहूं। और इधर एक और मैसेज फेसबुक पर, डिंपल बुधी राजा जी माजन बाग से आप लिखती हैं, कंग्रेचुलेशंस राजेश फॉर दिस एंड विश यू बेस्ट फॉर द न्यू जर्नी यू स्टार्ट आफ्टर दिस। और डिंपल जी को गाने का बहुत शौक है और हर बार उनकी कोशिश रहती है कि कुछ नया, कुछ डिफ़िकल्ट सा गाना वो गाना चाहती हैं। और उन्हीं में से एक गाना जो उनकी बड़ी तमन्ना है कि वो गाएं, और गाएं नहीं, बहुत अच्छे से गाएं, डिंपल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

जी हाँ, और बात सिंगर्स की हो तो दूसरा दोस्त कहाँ पीछे रह सकता है। हेमंत जी जो कि सेवन हिल से हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं, आप लिखते हैं, राजेश ग्रेट जर्नी एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मेड लाइफ लवेबल विद योर मेलोडियस कंपनी विद फुल ऑफ इमोशन पैशन एंड एनर्जेटिक सॉन्ग्स, वेल डन मैन। और हेमंत जी भी अच्छे सिंगर हैं, मराठी रेडियो के साथ जुड़े रहे हैं और मिर्चीवाला एफएम की किस्मत खुशकिस्मती कि हमें भी आपको एंटरटेन करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच हेमंत भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप भी उन लिसनर्स में से हैं जिन्होंने मुझे हमेशा हमेशा मोटिवेट किया, और नोइंग यू आपका एक फेवरेट सॉन्ग

लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। और इधर एक प्यारा सा मैसेज भेजा है देवंगनी पटेल जी ने, एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली, बहुत प्रोग्राम की बहुत पुरानी लिसनर है, प्रॉस्पेक्ट से हमारा प्रोग्राम सुना करती थी। आप लिखते हैं, हेलो राजेश, ऑल द बेस्ट, आई एम गोइंग टू मिस रेडियो मिर्ची, इट्स बिन 20 years सिंस इट्स बिन ब्रॉडकास्ट एवरी थर्सडे नाइट, थैंक यू विद अ ग्रेट स्माइल। ये हैं देवंगनी पटेल जी। और बहुत सारी आपकी वो फरमाइशें जो आपने सालों मुझे की, मेरे पास बहुत सारी बुकलेट्स जिसमें आपका नाम और आपकी फरमाइश लिखी हुई है। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, देवंगनी जी बताइएगा कि ये गीत आपका फेवरेट था एक समय पर या नहीं।

जी हाँ, और ये था गीत चुरा लिया है। और इधर चुपके चुपके एक और लिसनर, जो कि हमारे प्रोग्राम के रेगुलर लिसनर कहूँ तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि अगर 20-20 साल में से अगर उन्होंने कुछ महीने रेगुलर नहीं सुना तो आप उनका वो श्रेय कि वो हमारे प्रोग्राम के फाउंडर लिसनर हैं आप ले नहीं सकते। ये हैं संजय खन्ना जी, जो कि कैलीविल से हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ते हैं और क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं, और गानों में उनका एक खास यूनिक सा टेस्ट है। घर में अलग से कोने पे उन्हें एक जगह बनाई हुई है जहां वो बैठकर मिर्ची वाला एफएम सुनते हैं, और उस कमरे में और किसी को आने की इजाज़त नहीं। अगर आना है तो धीरे बोलना है, और ताकि क्योंकि संजय जी इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे हैं और रिलैक्स होने की कोशिश कर रहे हैं। आप लिखते हैं, राजेश वॉज वेरी सरप्राइज टू हियर रेडियो मिर्ची वाला विल नॉट बी पार्ट ऑफ आवर थर्सडेज एनी मोर। यस, आई हैव बिन गिल्टी ऑफ नॉट बींग ए रेगुलर लिसनर ओवर लास्ट फ्यू मंथ्स, और आई कैन से 1 year और सो, बट सर्टनली विल मिस मिर्ची वाला एफ एम एंड योर वॉयस एंड प्रेजेंटेशन, योर चॉइस ऑफ सॉन्ग्स एंड मच मोर ए लॉट। ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू हैव प्लान्स फॉर। सॉरी अगेन, डिड नॉट जॉइन द प्रोग्राम ऑन टाइम टूडे एज वेल, सो नॉट श्योर इफ यू हैव सेड एनी थिंग अबाउट फ्यूचर प्लान्स, बट विल स्टिल बी इन टच ऑफ एयर। आई होप सो एंड इट्स बाय फॉर नाउ। थैंक यू संजय जी। वट फ्यूचर होल्ड्स फॉर मी तो वो सिर्फ ऊपर वाले को ही पता है फिलहाल, मगर आप उन लिसनर्स में से हैं जिन्होंने मुझे हमेशा इनक्रेज किया। ऐसे बहुत सारे लिसनर्स हैं आपके साथ जो मुझे इनक्रेज भी किया और मेरे साथ जुड़े भी रहे हर शाम। जैसे एक परिवार में एक छोटा भाई अगर कुछ इनिशिएटिव लेता है और बड़ा साथ बैठकर उसे होल्ड्स फॉर मी तो वो सिर्फ ऊपर वाले को ही पता है फिलहाल, मगर आप उन लिसनर्स में से हैं जिन्होंने मुझे हमेशा इनक्रेज किया। ऐसे बहुत सारे लिसनर्स हैं आपके साथ जो मुझे इनक्रेज भी किया और मेरे साथ जुड़े भी रहे हर शाम। जैसे

I will always have that spirit for you as a brother in the family. और आपका आपका जो टेस्ट है, जहाँ गीत वहाँ आपका क्रिकेट का शौक, उन दोनों को डेडिकेट करते हुए ये गीत उम्मीद आप कनेक्ट कर पाएंगे आज मिर्ची वाला एफएम पर.

जी हाँ, ये हैं संजय खन्ना जी, द फेवरेट ऑफ सिडनी साइडर्स। म्यूजिक के मेरे फेवरेट हैं और क्रिकेट के आपके। आप सुन रहे हैं मिर्ची वाला FM, मिर्ची वाले राजेश के साथ। और जी हाँ, और जैसा आपको मैंने बताया कि अब हमारे प्रोग्राम के लास्ट 30 मिनट्स ऑन अलाइव 90.5 हैं, और उधर मेरी बेटी तानिया भी हमारा प्रोग्राम सुन रही है। और तानिया और मैंने मिलकर ये सिग्नेचर ट्यून बनाया था, जिसमें आवाज़ मेरी थी और म्यूज़िक था तानिया ने जो ढूंढा और कंपोज किया, और आपके साथ वो ट्रैक मैंने शेयर किया सालों साल। उसके जो स्क्रिप्ट थी वो ज़रूर मैंने लिखी थी, मगर आज आपके साथ क्योंकि इसके बाद शायद मुझे भी मौका ना मिले इस बात को कहने का। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिर्ची वाला FM नाउ प्रेजेंट्स बॉलीवुड सॉन्ग्स ऑन अलाइव 90.5। स्टे ट्यून टू मिर्ची वाला FM। बहन और भाइयों, मिर्ची वाला FM अब पेश करते हैं बॉलीवुड फिल्मी गीतों का संगम अलाइव 90.5 पर। सुनते रहिए मिर्ची वाला FM। और इधर बहुत बहुत सारे दोस्त जो हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, वो अपनी तरह से मुझे स्टूडियो में फ़ोन भी कर रहे हैं और बात भी करना चाहते हैं शायद, मगर आखिरी 30 मिनटों में मैं सिर्फ और सिर्फ हर बार की तरह आपको एंटरटेन करने का वादा और इरादा रखते हुए प्रोग्राम को आगे लिए चलता हूं। और इस वक्त तानिया के साथ हैं उनके हस्बैंड जुल्फिकार, यानी मेरे सन इन लॉ। आप दोनों को डेडिकेट करते हुए ये प्यारा सा गीत।

और उधर प्रोग्राम के साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं वंदना जी, जो कि हमारे प्रोग्राम को सुन रही हैं और मुबारकबाद दे रही हैं इन इस जर्नी की, और विशिंग मी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच वंदना जी, वंदना गुप्ता जी।

प्रोग्राम को आगे लिए चलता हूँ और एक बड़ा ही प्यारा सा मैसेज भेजा है मेरे एक अच्छे दोस्त और उनका नाम है अमरजीत सिंह जी. आप लिखते हैं, राजेश थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. आई हैव बीन मिसिंग फॉर क्वाइट सम टाइम बट विल ऑलवेज बी विद यू. आप जहाँ भी जाओगे यू विल श्योरली बी मिस्ड ऑन थर्सडे नाइट. स्टे हेल्दी एंड वेल्दी ऑलवेज. अमरजीत जी बड़े अच्छे इंसान और एक अच्छे दोस्त हैं. एक दोस्ती के किसी मोड़ पर मैं और अमरजीत जी मिले जहाँ एक दुख का ओकेजन था और पता नहीं कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि हम आपस में काफ़ी टाइम से मिले नहीं थे और फिर एक मुलाकात हुई एक ऐसे प्रोग्राम में जहाँ अमरजीत जी गेस्ट थे और मैं परफॉर्म कर रहा था. मेरे पास वो सेवा थी, भगवान ने फिर मिलवाया और आज देखिए मैं इससे अच्छा गिफ्ट नहीं सोच सकता था कि एक दोस्त का मैसेज फिर मुझे आया. अमरजीत जी आपको सल्यूट कि आपने इनिशिएटिव लिया और आपने एक बार फिर मुझे गले लगाया है आपके और सिर्फ आपके लिए.

जी हाँ, क्या सुनना चाहेंगे अब आखिर के 15 मिनट? आखिर के 15 मिनट सिर्फ और आपके और मेरे बीच, मेरी पसंद के कुछ गीत, मेरे दिल के पास आपकी नजर, मिर्ची वाला एफएम के आखिरी पड़ाव में।

राहत फतेह अली खान साहब का गाया हुआ गीत। उधर परेश जी पूछ रहे हैं कि ये तुझे कब से अच्छा लगने लगा। बड़े अच्छे सिंगर हैं और इस गज़ल के जो स्टार्टिंग के जो बोल हैं वो मेरे दिल के बहुत बहुत करीब हैं। जी हाँ, और एक ऐसे और शख्स हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, बात कर रहा हूँ प्राची और विनीत। प्राची और विनीत इस वक्त मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं। प्राची मेरी बेटी और विनीत मेरे होने वाले सन इन लॉ। आप हमारा ये प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं और शायद बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि डैड की आवाज़ कभी रेडियो पर सुनने को मिले या ना मिले। लव यू बोथ। आप दोनों का पसंदीदा गीत मिर्ची वाला FM पर।

चलिए प्रोग्राम को आगे लिए चलता हूँ और एक और बड़ा ही प्यारा सा मैसेज, माफ़ कीजिएगा, बड़ा ही प्यारा सा मैसेज भेजा है कश्मीरा दवे जी ने। आप लिखते हैं, थैंक यू फॉर 20.5 years ऑफ प्योर एंटरटेनमेंट एंड कनेक्शन। द टाइम हैज़ कम, वी विल मिस योर वॉइस एंड इट्स हार्ड टू फिल द वॉइड क्रिएटेड बिटवीन 8 to 10 PM. But I'm sure the 20 years worth of memories will keep us afloat. Our very wishes for the next endeavors for you. Thank you so much for sharing your passion with us. Kashmira ji ke bare mein thoda kahun, jyada kahun, nahi pata. Kashmira ji aur Paresh, dono husband wife, mere liye agar 20 saalon mein aap aise kahiye ki kam se kam 5 se 7 saal tak हर प्रोग्राम में, स्पेशली विंटर में, अपने घर से चाय बनाकर और वो स्टूडियो लाते थे, मेरे साथ वो चाय पीते थे और आधा घंटा एक घंटा मेरे साथ बैठकर, ताकि मैं अकेला महसूस ना करूं। उन दिनों में मैं रात 9 से 12 बजे भी प्रोग्राम किया है मैंने, फिर 7 से 10 तो कर कई साल किया, मगर आप दोनों की उस जेस्चर को, उस प्यार को, उस दोस्ती को मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। थैंक यू सो मच। और ये अगला गीत सिर्फ और सिर्फ आप दोनों के लिए।

चलिए इससे पहले कि प्रोग्राम खत्म हो एक और फरमाइश चलते चलते जुल्फिकार आपकी फरमाइश आपके पसंदीदा प्रोग्राम मिर्ची वाला एफएम पर

जय दीवाना जी, आपसे दार लेने का वक्त आ गया है और ये डायलॉग भी शायद आखिरी बार कहने का वक्त आ गया है कि स्टूडियो की घड़ी वक्त बता रही है अलाइव 90.5 पर आपसे इजहार लेने का वक्त आ गया है। मेरे साथ मेरी हमनवा, मेरी लाइफ पार्टनर मीनू भी आज स्टूडियो में है। चलते चलते साइनिंग ऑफ, बाय फॉर नाउ, शब्बा खैर, अंटिल आई सी यू नेक्स्ट टाइम।